कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, हर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

के तू बैठ जाए जाते मंदिर का पास है, मिलने की रात है, तू क्यों दास है।

तेरी मंजिल की वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की याद है, तू क्यों दा

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: राम जन्म की बधाई है, बधाई है। राम जन्म की बधाई है, बधाई है।